सुधन्वाखंड परशुर दारुणो द्रविण प्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमश्शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गश्शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः

भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिः।

भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी का महत्व समझाने जा रहा हूँ कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से कैसे समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, उस समय श्री अयोध्या जी में सूर्यवंशी सम्राट राजा मानधाता राज कर रहे थे। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, वर्षों तक पानी की एक बूंद भी ना गिरी थी। आइए कथा के माध्यम से जानते हैं।

भक्तों, सारे राज्य में हाहाकार मची हुई थी। प्रजा, पशु पक्षी समस्त जीव संकट में थे। भूख प्यास से बेहाल, प्राण विहीन होते जा रहे थे। मानधाता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अकाल के कारण राज्य में हवन यज्ञ पूजा पाठ वेद मंत्रोच्चारण सब बंद हो चुका था। मानधाता को चिंता सताए जा रही थी। एक दिन राजा मानधाता वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, महर्षि भंगीरा के आश्रम की ओर।

बड़े ही दीनहीन भाव से बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, सप्त ऋषियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं आप। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे कष्टों का निदान आप ही कर सकते हैं। मेरे राज्य पे भारी अकाल पड़ गया है, प्रजा पशु पक्षी समस्त जीवों के प्राण संकट में हैं। मेरी प्रजा मुझको ही दोषी मान रही है। प्रजा का कहना है राजा के पापों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है, जबकि मैं सपनों में भी पाप नहीं कर सकता हूँ।

मानधाता की करुणा विनय सुनने के बाद ऋषि अंगिरा ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, ये चारों कालों में प्रथम काल सतयुग चल रहा है। इस युग में वेद पढ़ना, हवन यज्ञ करना, जप तप करना केवल ब्राह्मणों के लिए ही माने हैं। ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा ऐसा करेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपके राज्य में एक शूद्र कठिन तपस्या कर रहा है, यदि आप उसका वध कर दें तो आपके राज्य से संकट कट जाएगा और भरपूर वर्षा होगी।

राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं किसी निर अपराध का वध नहीं कर सकता हूँ। आप कृपा करके कोई दूसरा सरल सुगम उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, एक अत्यंत ही सरल एवं सुलभ उपाय बताता हूँ। आपको भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत करने से नक्षत्र ग्रहों की और पूर्व प्रबाध से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करोगे तो आपके राज्य में पूर्ण चतुर्मास तक बरसात

4.8 मेगा हर्ज में। एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम वंदना प्रत्येक दिन साझा 7 बजे देखि 8 बजे सम्म सुमधुर भजनहरूको संध्या कार्यक्रम भक्ति संध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव 98 41 28 98 20 मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 में संपर्क कर सकू। प्रत्येक सोमबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम ज्ञानोदय। यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर बाग बजार र चारवहिल। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजली प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो शुरू हो चुका है। मैं हूँ रुचि आपके साथ और एक बार फिर से कुछ पुराने आर्टिस्ट की जिंदगी के नए किस्से और कहानियां आपके सामने लेकर के आई हूँ, साथ ही सुपर हिट गाने भी लेकर आई हूँ। आज एक नया दिन है और आज की मेरी प्लेलिस्ट बॉलीवुड के उन एक्टर्स के नाम है जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग में भी पॉपुलैरिटी कमाई है, जिनका खुद का एक अलग डांस स्टाइल बन गया था। वैसे बॉलीवुड लैविश सेट्स, एक्सोटिक लोकेशंस, बोल्ड और ग्लैमरस हीरोइंस के अलावा सबसे ज्यादा अपने गानों और डांस के लिए ही जाना जाता है। और अपने बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके डांस मूव्स पर आज भी पूरा इंडिया ग्रूव करता है, जिनके डांस स्टाइल को आज भी कॉपी किया जाता है। और बॉलीवुड डांसिंग स्टार्स की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित का नाम ना आए, उनकी अदाएं, उनके एक्सप्रेशंस हमारे दिमाग में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तेजाब फिल्म के गाने 1, 2, 3 के साथ में इन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और इसी गाने के साथ में सरोज जी और माधुरी के बीच में गुरु शिष्य की ये जो कहानी थी, ये जो जोड़ी थी, वो बन गई। दोनों ने चोली के पीछे क्या है, धक धक जैसे और भी कई सुपरहिट कल्ट डांस नंबर्स दिए हैं, जिसके कारण माधुरी जी को डांसिंग दीवा का खिताब मिल गया। वैसे माधुरी जी वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान जी को अपना गुरु मानती हैं और आज भी जब भी वो उनके सामने आए पहले उनके पैर पड़ती हैं। माधुरी दीक्षित वैसे एक ट्रेन डांसर थी, उन्हें बॉलीवुड स्टाइल ऑफ डांसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जो भी ट्रेनिंग दी वो सरोज जी ने ही दी। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि सरोज जी ने जो अवार्ड विनिंग सॉन्ग 1, 2, 3 था उसे सिर्फ 20 मिनट में ही कोरियोग्राफ कर लिया था। ऐसे एक और गाना था जिसकी शूट के पहले पूरा के पूरा डांस अलॉन्ग विद एक्सप्रेशंस माधुरी दीक्षित ने सरोज जी से करवाया था, जिससे कि माधुरी हू वही एक्सप्रेशंस को भी कॉपी कर सके। और वो गाना था सैलाब फिल्म का गाना हमको आजकल है। तो चलिए वही गाना जिसे सरोज जी को फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला था सुनाती हूँ आपको अनुपमा देशपांडे जी की आवाज़ में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: सुच्चे पाटी।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज के सभी गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ वो हमारे बॉलीवुड के सुपरहिट डांसिंग स्टार्स के गाने हैं। आई होप आपको आज की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है। अर्ली 80s की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स अगर कोई थे तो वो ऋषि कपूर जी थे। एक क्यूट लवर बॉय से लेकर अपने डांसिंग स्किल्स, इन सभी का इस्तेमाल करके ये सबके दिलों के राजकुमार तो बन ही चुके थे। उनकी डांसिंग, जिसमें ज्यादातर जंपिंग, बाउंसिंग और जॉगिंग हुआ करता था, उसका हर कोई फैन हो गया था। ऋषि जी खुद कहते हैं एक इंटरव्यू में कि मैं तो पागलपना किया करता था, न जाने लोगों को ये डांस कैसे लगता था। ऐसे एक इंटरव्यू में ऋषि जी ने यह भी कहा था कि उन्हें अपना एक गाना जो कि बिल्कुल पसंद नहीं था वो था डफली वाले। इनफैक्ट जब बोनी कपूर उनके पास ओम शांति ओम की रिकॉर्डिंग लेकर आए थे तब उसे सुनकर भी ऋषि जी भड़क गए थे और कहा था कि कितना बुरा गाना लेकर आए हो मेरे लिए। काफी कन्विंस करने के बाद वो गाना उन्होंने किया और बताइए कितना बड़ा हिट हुआ। चलिए आइए सुनते हैं अगला गाना उनकी उस फिल्म से जिसके मेडली का हर गाना खूबसूरत है। इस गाने की इंस्पिरेशन फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब को लंदन के एक नाइट क्लब के परफॉर्मेंस से मिली थी। हम किसी से कम नहीं फिल्म से अगला गाना आपके लिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज हम बॉलीवुड के डांसिंग स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं हूं रुचि आपके साथ, और गोल्डन एरा के पॉपुलर डांसिंग स्टार्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेलेन जी का नाम तो सबसे ऊपर आता है। हेलेन जी वो स्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बेली डांस और कैबरे को इंट्रोड्यूस किया। हेलेन जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ बैकग्राउंड डांसर। 19 साल की थी ये जब उन्हें ब्रेक मिला हावड़ा ब्रिज फिल्म में। वो पॉपुलर गाना था ना, मेरा नाम चिन चिन चू, उसके साथ अपने एक्सीलेंट फुटवर्क और सेक्सी डांस मूव से वो 80s की डांसिंग क्वीन बन गई थी। क्या आपको पता है, प्रोड्यूसर्स मूवी खरीदते ही थे ये पूछ करके कि हेलेन जी का एक डांस नंबर होगा कि नहीं होगा। इनफैक्ट उनके सेंशियस डांस नंबर्स के कारण उन्हें कई बार पब्लिक प्लेसेस में बुरखा पहनकर जाना पड़ता था। काफी कम लोग ये जानते हैं कि हेलेन जी के डांस करियर पर 3 किताबें भी लिखी गई हैं और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। वैसे हेलेन जी के कई गाने आशा जी ने गाए हैं, और हेलेन जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाया करती थी जब आशा जी ये गाने गाती थी, जिससे कि जिस इमोशन, जिस फील के साथ वो गाना गा रही हैं, उसी इमोशन को वो अपने डांस में भी दिखा सके, बता सके। एक ऐसा गाना जिसके लिए आशा जी को अवार्ड मिला है और हमें हेलेन जी जैसा रिवॉर्ड मिला है, वो गाना आपको सुनाती हूँ मैं। कारवां फिल्म से हेलेन जी का वन ऑफ द मोस्ट सेंशियस सॉन्ग्स एवर, पिया तू अब तो आ जा।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे डांसिंग हीरो की बात करें तो मिथुन दा को कैसे भूल सकते हैं। उनका डिस्को डांसर सॉन्ग का सिग्नेचर स्टेप आज भी लोगों में पॉपुलर है। अपने डिस्को देसी फ्यूजन स्टाइल के कारण उन्हें बॉलीवुड का बेस्ट डांसिंग हीरो माना जाता है। काफी कम लोग ये जानते हैं कि अपने स्ट्रगलिंग डेज में मिथुन दा हेलेन जी के असिस्टेंट रह चुके हैं, और उन दिनों उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि स्टेज पर परफॉर्म करना सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाने के लिए हुआ करता था। आज वो इस मुकाम पर हैं कि लोग उन्हें डांसिंग के ग्रैंड मास्टर मानते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि मिथुन दा अच्छे एक्टर और डांसर के साथ साथ एक अच्छे कुक भी हैं। हमेशा वो अपने जन्मदिन पर घर पर पार्टी किया करते हैं, और सभी लोग जो आते हैं उनके लिए खुद से खाना बनाते हैं और ट्रीट देते हैं। स्पेशली बिरयानी बड़ी पसंद है उन्हें, तो बिरयानी खाते हैं और उसके बाद डांस करके सभी पचा भी लेते हैं। खैर, आइए सुनते हैं अगला गाना उन्हीं की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: One oh four eight.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और हिंदी सिनेमा के डांसिंग सुपरस्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। और अगर कोई एक ऐसी डांसर है जिन्होंने चाहे कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो लेकिन फिर भी डांसिंग डीवा है, तो वो है हमारी बबली चांदनी यानी कि श्रीदेवी जी। अनट्रेन थी लेकिन फिर भी डांसिंग लेजेंड थी। श्रीदेवी जी वॉज अ मास्टर ऑफ हर आर्ट। उनके परफॉर्मेंसेस ब्रेथ टेकिंग हुआ करते थे। इट्स हार्ड टू बिलीव कि उन्होंने कभी डांस सीखा ही नहीं था। श्रीदेवी जी की भी फेवरेट कोरियोग्राफर माधुरी दीक्षित की तरह सरोज जी ही थी। लेकिन श्रीदेवी जी को हमेशा सरोज जी से एक शिकायत रहती थी। वो कहती थी कि आप माधुरी को मुझसे ज्यादा अच्छा डांस सिखाती हैं। और सरोज जी कहती थी वो इसलिए क्योंकि माधुरी ज्यादा अच्छा सीखती है, मैं जो बोलती हूँ वो बिना कोई सवाल जवाब किए हू कैमरा के सामने परफॉर्म करती है। लेकिन श्रीदेवी, तुम्हारे पास में मेरे हर एक एक स्टेप और हर एक एक एक्सप्रेशन के लिए सवाल होता है। वैसे हमारी श्रीदेवी जी सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं बल्कि काफी प्रोफेशनल भी थी। चालबाज फिल्म के गाने किसी के हाथ ना आए कि ये लड़की के दौरान श्री जी को कुछ 103 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने बारिश में डांस किया था और हमें वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस दी। क्या आप जानते हैं 4 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मी जगत में एंट्री ले ली थी। वैसे वो एक गाना जो उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक गाना बन गया, वो गाना यहां पे ना सुनाऊं आपको ऐसा कैसे हो सकता है। चांदनी फिल्म से सुनिए अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं रुचि आपके साथ।

0: I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show.
1: चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।

आहा, इस समय देखिए दुनिया भर के कितने करोड़ों गीतमाला प्रेमी आकर बैठे हैं सन 1961 की गीतमाला की छांव में। यहाँ हम उस साल के छांव वाले बड़े लाजवाब गीतों का मजा तो लेंगे ही, पर साथ ही साथ सालाना संगीत सीढ़ी के टॉप हिट गीतों की झलकों की बिजलियां भी गिरती रहेंगी हमारे दिल पे, जैसे पायदान नंबर 32 पर फिल्मों की कई बरसों से एक अकेली म्यूजिक डायरेक्टर्स उषा खन्ना की ये धुन।

0: पान।
1: वार्षिक पायदान नंबर 31 पर भी यही देश था, मगर गीत उस जमाने की उस ग्रेट फिल्म का था जिसका हर गीत और एक एक सीन भी आज तक फिल्म प्रेमियों को याद है। जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं जानता हूँ कि गीतमाला के सुपरहिट गीतों को भी आप कभी कभी पूरा पूरा भी सुनना चाहते हैं, मगर उन्हें तो आपने हजारों बार रेडियो स्टेशनों पर भी सुना है और सारे गामा के बहुत सारे सिलेक्शंस के सीडीज या MP3s पर भी सुनते ही रहते हैं। तभी तो आपका ये वफादार रेडियो दोस्त अमीन सायानी गीतमाला की छाव में उन्हें झलकों में ढालकर बेलगाम समय उन बड़े ही मधुर गीतों को देता है जिन्हें सालाना संगीत सीढ़ियों की धूप नसीब नहीं हुई और जिन्हें सुनने के लिए हम सब के साथ खुद गीतमाला भी तड़पती रहती है। देखिए कैसे।

ये फिल्म घूंघट ही वो पहली फिल्म थी बहन और भाइयों जो मुझे रेडियो पब्लिसिस्ट के रूप में साउथ की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शहर मद्रास में खींच लाई। ये खींचना हुआ था मेरे दो भाई समान दोस्त गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि की बदौलत। वाह साहब क्या शान थी वहां की जेमिनी स्टूडियोज की। वहां फिल्मों का हर काम बड़े इंतजाम बड़ी तैयारी बड़ी एफिशिएंसी के साथ होता था। हर चीज ठीक टाइम पर होती थी बिल्कुल कोई लेट नहीं आता था। बड़ी सी बड़ी हीरोइन भी अगर टाल मटोल करती ना तो जेमिनी के ऑफिसर उसके पीछे लग जाते कि अम्मा शूटिंग इज वेटिंग अम्मा कम क्विकली क्विकली इमीडिएटली अम्मा। वो लोग हीरोइनों को अम्मा तो बड़े अदब और बड़े आदर से कहते थे मगर वहां नई नई आई हुई हीरोइन जो थी ना वो जरा कुछ बुरा भी मान जाती कि हाय मुझे अम्मा कह रहा है क्या मैं बुढ़िया लगती हूँ। भाई वाकई बहुत मजा आता था मुझे मद्रास यानी चेन्नई में। मगर वैसे बंबई की फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी उन दिनों कुछ कम मजेदार कुछ कम रंगीन नहीं हुआ करता था साहब।

0: पता चला।
1: वैसे झुमरों के बाकी गीतों के शायर थे मजरू सुल्तानपुरी, और उन गीतों में से एक तो किशोर कुमार के ऑल टाइम ग्रेट गीतों में गिना जाता है, जो आप अगले वॉल्यूम नंबर 17 में सुनेंगे। मगर बहनों भाइयों, यहाँ मैं आपको अपनी एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो वैसे गीत माला से भी जुड़ी हुई है। हुआ यह कि गीत माला जैसे रेडियो सिलोन के स्पॉन्सर्ड प्रोग्रामों के लिए और छोटे छोटे कमर्शियल्स के लिए भी भारत से श्रीलंका पैसे भिजवाने में कुछ बंदिशें आने लगी थी। तो मुझे राय दी गई कि भैया अमीन, तुम्हारी रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए तुम कोई और काम ढूंढो। तो साहब, काफी ढूंढने के बाद मुझे मिल गई एक बहुत बड़ी कंपनी जो कई तरह के साबुन और पकाने और लगाने के तेल बनाती थी और जिसके ऑफिसर्स खुद गीतमाला के फैंस थे। तो वहां के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे न सिर्फ नौकरी मिल गई, बल्कि चूंकि वो लोग न टूथपेस्ट बनाते थे न फिल्में बनाते थे, इसलिए मुझे अपने फ्री टाइम में गीतमाला और फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी करते रहने की इजाजत भी मिल गई। और शुक्र है मेरा नाता मेरी प्यारी गीतमाला से जारी रहा। मगर वैसे भी दिन भर काम में लगे रहने वाले इस बेचारे अमीन सायानी का काम अब आधी पौनी रातों तक भी फैलने लगा साहब। अरे, एकदम धमाकेदार परेड हो गई मेरी। और जाहिर है बहनों भाइयों, मेरी बीवी को बहुत बुरा लगने लगा कि ये भी कैसी जिंदगी है भाई, तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है और घर वाले कुछ भी नहीं है। बहनों भाइयों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होती ना तो जरूर कहती कि ओहो, तुम नहीं मानोगे, अपनी बातें सबको क्यों बता रहे हो।

देखिए साहब, आज मैंने आपका मजा बदलते रहने के लिए पहले 4 हिट गीतों की झलकें बजा दी और फिर 4 छांव वाले पूरे पूरे गीत बजा दिए। तो अब जरा फिर से बहनों भाइयों पकड़िए स्पीड और फटाफट सुनिए 4 और झलकें जो शुरू होती हैं 1961 की पायदान नंबर 28

हाँ भाई, मुगले आजम के बाकी गीत तो गीतमाला के 1960 के 1960 के सालान प्रोग्राम में बच चुके थे, बस ये एक गीत सन 61 में आ गया। वैसे 1961 में भी नौशाद साहब और दिलीप कुमार की दो और हिट फिल्में थीं, कोहिनूर और गंगा जमुना।

0: अच्छा बहनों भाइयों, अब फिर शुरू होते हैं 1961 के कुछ और खूबसूरत छांव वाले गीत। मगर भाई पहले सुनिए फिल्म संगीत की दुनिया की एक बहुत ही हैरतअंगेज घटना। जी हाँ, दो महान बिछड़े हुए संगीत साथियों के पुनर्मिलन के पहले कदम का हाल है ये। दो बड़े सुरीले साथी दादा सचिन देव बर्मन और हम सब की प्यारी दीदी लता मंगेशकर, दोनों के बीच एक अनबन सी हो गई थी 1957 में, जो आखिर जाकर सुलझी 1963 में। ये उलझन क्या थी ये भी बहनों भाइयों लता जी खुद आपको बताएंगी हमारे एक अगले वॉल्यूम में। लेकिन आपको पता है अनबन के उन 6-7 वर्षों में लता ने कोई भी गाना बर्मन दादा के लिए नहीं गाया। मगर 1960 से कुछ पहले दोनों को फिर मिलाने का एक पहला जबरदस्त कदम आप जानते हैं कैसे उठा, बताइए लता जी।
1: सुलह करवाई इस बात ने कि पंचम बड़ा हो गया।
2: पंचम यानी राहुल देव बर्मन।
1: हाँ, तो वो बड़ा हो गया और उसको म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पहली फिल्म मिली छोटे नवाब
2: जी।
1: उसके लिए पंचम ने शास्त्रीय आधार पर एक धुन बनाई और दादा को वो धुन गाकर सुनाई। धुन सुनते ही दादा ने मुझे फोन किया और बोले, देख लोता, हमारा पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है, तू उसका एक गाना गाएगा? जरूर गा, हम तेरे को बोलता है। बस उस टेलीफोन ने बरसों की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया और मैंने पंचम का वो गाना गाया।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में और भाई उस फिल्म छोटे नवाब से आर डी बर्मन भी हिट हो गए और पंचम और महमूद से मेरी दोस्ती भी फिट हो गई, क्योंकि उसी फिल्म से लेकर महमूद की प्रोड्यूस की हुई तमाम फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी मैंने ही की थी। और भाई हर फिल्म के रेडियो प्रोग्रामों के लिए वो खुद यानी महमूद खुद मेरे स्टूडियो में आकर धूम मचाते रहे।
3: अमीन भाई हम हमारा माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छा बच्चा था।
4: अच्छा?
3: हाँ, बहुत अच्छा बच्चा। मेरे तरफ से मेरा माँ बाप को बहुत फायदा होता था।
4: अच्छा अच्छा, वो कैसे?
3: हमारा घर में एक बार एक मेहमान आया तो दूसरी बार नहीं आता था।
4: अच्छा, वो क्यों महमूद भाई?
3: मेरे को चोरी करने का आदत था अमीन भाई।
4: अरे बाप रे।
3: कोई भी रिश्तेदार है, चाहे मेरा माँ का रिश्तेदार हो, मेरा बाप का रिश्तेदार हो, या दोस्त है, या कोई भी आता था घर में, वो बेचारा रात को सोता था, हम उठ के जाता उसके पॉकेट मार देता।
4: अरे बाप रे, मैं जरा देख लूं मेरा पॉकेट तो ठीक है।
3: आपका पॉकेट ये, अभी देखो मैं बड़ा हो गया, अभी आजकल पॉकेट नहीं मारता जी, बचपन का बात करता आपको।
4: अच्छा अच्छा,
3: तो एक बार उसका पॉकेट मारा तो दूसरी बार वो मेहमान वापस घर में आके रहता नहीं था। इसलिए मेरे तरफ से मेरे माँ बाप को बहुत फायदा था।
4: बहुत खूब।
2: अच्छा भाई, अब महमूद के बाद दो टॉप के प्लेबैक सिंगर्स की राय सुनिए। किसके बारे में? अजी, अपनी यही गीतमाला के बारे में और गीतमाला की छाओं के बारे में भी।

और उसी साल की छाओ में सलिल चौधरी और प्रेम धवन और मन्ना डे की कलाओं का एक बहुत ही अमर लाजवाब बे

ओके साहब, अब आ रहा है एक मजेदार फ्लैशबैक उस साल के एक धूमधड़ाकेदार स्टेज शो का, जिसे मैं कंपेयर कर रहा था और जिसमें गेस्ट की हैसियत से तशरीफ लाए थे वो मजेदार मर्दाना हीरो, जिनकी एंट्री फिल्मी दुनिया में 1961 से जरा पहले रिलीज होने वाली फिल्म के जरिए हुई थी। ये थे ही मैन धर्मेंद्र। तो साहब, धर्मेंद्र जी अपने स्टाइल से झूमते झामते स्टेज पर आए और बोले, अजी मैं तो कुछ भी नहीं था और इतना कड़का था कि अक्सर पैदल चलकर मुझे स्टूडियोज के चक्कर लगाने पड़ते थे काम ढूंढने के लिए। वो तो भला हो डायरेक्टर रमेश सहगल का कि उन्होंने अपनी फिल्म शोला और शबनम में मुझे सड़क से उठाकर हीरो बना दिया। मुझे शरारत सूझी और मैंने कहा, धर्मेंद्र जी आहा हा हा, कितनी शुभ सड़क थी वो, जरा उस सड़क का नाम तो बताइए। तो धर्मेंद्र पहले तो बौखलाए, फिर हंसे और फिर हमेशा के लिए मेरे दोस्त बन गए। खैर साहब, वो किस्सा छोड़िए और याद कीजिए कि फिल्म शोला और शबनम में एक नई हीरोइन ने किस नई गायिका की आवाज के सहारे धर्मेंद्र से नयन लड़ाए थे।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। उस जमाने की वो कुछ कुछ नहीं बड़ी सुरीली गायिका थी जगजीत कौर, जिन्होंने आगे चलकर भी कई लाजवाब गीत गाए और फिर उनकी शादी भी हो गई अपने बड़े मशहूर, बड़े शानदार, बड़े टैलेंटेड संगीतकार खय्याम साहब से। अच्छा, अब सुनिए एक और बड़े गुणी, बड़े भावुक संगीतकार के बारे में। बहनों भाइयों, ये थे जयदेव, जो पहले नवकेतन के लिए उस्ताद अली अकबर खान के असिस्टेंट बने, फिर 8 फिल्मों में एसडी बर्मन को असिस्ट किया और 3 छोटी फिल्मों में खुद म्यूजिक देने के बाद उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्म मिली हम दोनों, जिसने 1961 में तो धूम मचा दी साहब। उस फिल्म के 2 गीत काफी ऊपर बजे थे गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणी पर, मगर 3 गीत जो छाओं में रह गए उनमें से एक था
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: यस देवानंद साहब, मगर वो गीत सुनवाने से पहले मैं जरा सुनने वालों को वॉर्न किए देता हूँ कि हम दोनों में देवानंद साहब हर चीज को जिस धुएं में उड़ाते चले गए थे, यानी सिगरेट या सिगार के धुएं में, वो धुआं बड़ा खतरनाक होता है। तो बहनों भाइयों, आप हो सके तो कभी भी सिगरेट, बीड़ी, सिगार, तंबाकू की ज्यादा आदत न डालिए। हाँ, अब सुनिए वो गाना।
3: मैं

0: लग गया।
1: और अब हमें साथ निभाना है 1961 के 8 और हिट गीतों की जेट स्पीड झलकों का। भाई पायदान नंबर 25 तक की झलकें तो आप सुनी चुके हैं और अब नंबर 24 की झलक आपको मिलवाएगी फिल्म कोहिनूर के दो सुपर सितारों से।

मस्ती एंड डांस द बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 MHz.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: FM AJ 104.8 MHz।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। आहा, इस समय देखिए दुनिया भर के कितने करोड़ों गीतमाला प्रेमी आकर बैठे हैं सन 1961 की गीतमाला की छांव में। यहां हम उस साल के छांव वाले बड़े लाजवाब गीतों का मजा तो लेंगे ही, पर साथ ही साथ सालाना संगीत सीढ़ी के टॉप हिट गीतों की झलकों की बिजलियां भी गिरती रहेंगी हमारे दिल पे। जैसे पायदान नंबर 32 पर फिल्मों की कई बरसों से एक अकेली म्यूजिक डायरेक्टर्स उषा खन्ना की ये धुन।

0: वार्षिक पायदान नंबर 31 पर भी यही देश था, मगर गीत उस जमाने की उस ग्रेट फिल्म का था जिसका हर गीत और एक एक सीन भी आज तक फिल्म प्रेमियों को याद है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: या

दोस्तों, मैं जानता हूँ कि गीतमाला के सुपरहिट गीतों को भी आप कभी कभी पूरा पूरा भी सुनना चाहते हैं, मगर उन्हें तो आपने हजारों बार रेडियो स्टेशनों पर भी सुना है और सारे गाना के बहुत सारे सिलेक्शंस के सीडीज या MP3s पर भी सुनते ही रहते हैं। तभी तो आपका ये वफादार रेडियो दोस्त अमीन सायानी गीतमाला की छाव में उन्हें झलकों में ढालकर बेलगाम समय उन बड़े ही मधुर गीतों को देता है जिन्हें सालाना संगीत सीढ़ियों की धूप नसीब नहीं हुई और जिन्हें सुनने के लिए हम सब के साथ खुद गीतमाला भी तड़पती रहती है। देखिए कैसे।

ये फिल्म घूंघट ही वो पहली फिल्म थी बहनों और भाइयों जो मुझे रेडियो पब्लिसिस्ट के रूप में साउथ की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शहर मद्रास में खींच लाई। ये खींचना हुआ था मेरे दो भाई समान दोस्त गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि की बदौलत। वाह साहब क्या शान थी वहां की जेमिनी स्टूडियोज की। वहां फिल्मों का हर काम बड़े इंतजाम बड़ी तैयारी बड़ी एफिशिएंसी के साथ होता था। हर चीज ठीक टाइम पर होती थी बिल्कुल कोई लेट नहीं आता था। बड़ी सी बड़ी हीरोइन भी अगर टाल मटोल करती ना तो जेमिनी के ऑफिसर उसके पीछे लग जाते कि अम्मा शूटिंग इज वेटिंग अम्मा कम क्विकली क्विकली इमीडिएटली अम्मा। वो लोग हीरोइनों को अम्मा तो बड़े अदब और बड़े आदर से कहते थे मगर वहां नई नई आई हुई हीरोइन जो थी ना वो जरा कुछ बुरा भी मान जाती कि हाय मुझे अम्मा कह रहा है क्या मैं बुढ़िया लगती हूँ। भाई वाकई बहुत मजा आता था मुझे मद्रास यानी चेन्नई में मगर वैसे बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी उन दिनों कुछ कम मजेदार कुछ कम रंगीन नहीं हुआ करता था साहब।

0: 1961 का एक बड़ा ही जबरदस्त छांव वाला गीत उस फिल्म का था जिसके जरिए फिल्मी दुनिया के सबसे बहुरंगी हीरो और सिंगर पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर बने, या बल्कि उस फिल्म में एक गीत उन्होंने लिखा भी, याद है कौन सा?
1: मैं हूँ

0: पता चला।
1: वैसे झुमरों के बाकी गीतों के शायर थे मजरू सुल्तानपुरी, और उन गीतों में से एक तो किशोर कुमार के ऑल टाइम ग्रेट गीतों में गिना जाता है, जो आप अगले वॉल्यूम नंबर 17 में सुनेंगे। मगर बहनों भाइयों, यहाँ मैं आपको अपनी एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो वैसे गीत माला से भी जुड़ी हुई है। हुआ ये कि गीत माला जैसे रेडियो सिलोन के स्पॉन्सर्ड प्रोग्रामों के लिए और छोटे छोटे कमर्शियल्स के लिए भी भारत से श्रीलंका पैसे भिजवाने में कुछ बंदिशें आने लगी थी। तो मुझे राय दी गई कि भैया अमीन, तुम्हारी रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए तुम कोई और काम ढूंढो। तो साहब, काफी ढूंढने के बाद मुझे मिल गई एक बहुत बड़ी कंपनी जो कई तरह के साबुन और पकाने और लगाने के तेल बनाती थी और जिसके ऑफिसर्स खुद गीतमाला के फैंस थे। तो वहां के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे न सिर्फ नौकरी मिल गई, बल्कि चूंकि वो लोग न टूथपेस्ट बनाते थे न फिल्में बनाते थे, इसलिए मुझे अपने फ्री टाइम में गीतमाला और फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी करते रहने की इजाजत भी मिल गई। और शुक्र है मेरा नाता मेरी प्यारी गीतमाला से जारी रहा। मगर वैसे भी दिन भर काम में लगे रहने वाले इस बेचारे अमीन सायानी का काम अब आधी पौनी रातों तक भी फैलने लगा साहब, और एकदम धमाकेदार परेड हो गई मेरी। और जाहिर है बहनों भाइयों, मेरी बीवी को बहुत बुरा लगने लगा कि ये भी कैसी जिंदगी है भाई, तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है और घर वाले कुछ भी नहीं है। बहनों भाइयों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होती ना तो जरूर कहती कि ओहो, तुम नहीं मानोगे, अपनी बातें सबको क्यों बता रहे हो।

देखिए साहब, आज मैंने आपका मजा बदलते रहने के लिए पहले 4 हिट गीतों की झलकें बजा दी और फिर 4 छांव वाले पूरे पूरे गीत बजा दिए। तो अब जरा फिर से बहनों भाइयों पकड़िए स्पीड और फटाफट सुनिए 4 और झलकें, जो शुरू होती हैं 1961 की पायदान नंबर 18।

हाँ भाई, मुगले आजम के बाकी गीत तो गीतमाला के 1960 के 1960 के सालान प्रोग्राम में बच चुके थे, बस ये एक गीत सन 61 में आ गया। वैसे 1961 में भी नौशाद साहब और दिलीप कुमार की दो और हिट फिल्में थीं, कोहिनूर और गंगा जमुना।

0: अच्छा बहनों भाइयों, अब फिर शुरू होते हैं 1961 के कुछ और खूबसूरत छांव वाले गीत। मगर भाई पहले सुनिए फिल्म संगीत की दुनिया की एक बहुत ही हैरत अंगेज घटना। जी हाँ, दो महान बिछड़े हुए संगीत साथियों के पुनर्मिलन के पहले कदम का हाल है ये। दो बड़े सुरीले साथी दादा सचिन देव बर्मन और हम सब की प्यारी दीदी लता मंगेशकर, दोनों के बीच एक अनबन सी हो गई थी 1957 में, जो आखिर जाकर सुलझी 1963 में। ये उलझन क्या थी ये भी बहनों भाइयों लता जी खुद आपको बताएंगी हमारे एक अगले वॉल्यूम में। लेकिन आपको पता है अनबन के उन 6-7 वर्षों में लता ने कोई भी गाना बर्मन दादा के लिए नहीं गाया। मगर 1960 से कुछ पहले दोनों को फिर मिलाने का एक पहला जबरदस्त कदम आप जानते हैं कैसे उठा, बताइए लता जी।
1: सुलह करवाई इस बात ने कि पंचम बड़ा हो गया।
2: पंचम यानी राहुल देव बर्मन।
1: हाँ, तो वो बड़ा हो गया और उसको म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पहली फिल्म मिली छोटे नवाब
2: जी।
1: उसके लिए पंचम ने शास्त्रीय आधार पर एक धुन बनाई और दादा को वो धुन गाकर सुनाई। धुन सुनते ही दादा ने मुझे फोन किया और बोले, देख लोता, हमारा पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है, तू उसका एक गाना गाएगा? जरूर गा, हम तेरे को बोलता है। बस उस टेलीफोन ने बरसों की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया और मैंने पंचम का वो गाना गाया।

0: आइए फिर एक बार गीतमाला की छाव में। और भाई उस फिल्म छोटे नवाब से आरडी बर्मन भी हिट हो गए और पंचम और महमूद से मेरी दोस्ती भी फिट हो गई, क्योंकि उसी फिल्म से लेकर महमूद की प्रोड्यूस की हुई तमाम फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी मैंने ही की थी। और भाई हर फिल्म के रेडियो प्रोग्रामों के लिए वो खुद, यानी महमूद खुद, मेरे स्टूडियो में आकर धूम मचाते रहे।
1: अमीन भाई हम हमारा माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छा बच्चा था।
2: अच्छा?
1: हाँ, बहुत अच्छा बच्चा। मेरे तरफ से मेरा माँ बाप को बहुत फायदा होता था।
2: अच्छा अच्छा, वो कैसे?
1: हमारा घर में एक बार एक मेहमान आया तो दूसरी बार नहीं आता था।
2: अच्छा, वो क्यों महमूद भाई?
1: मेरे को चोरी करने का आदत था अमीन भाई।
2: अरे बाप रे।
1: कोई भी रिश्तेदार है, चाहे मेरा माँ का रिश्तेदार हो, मेरा बाप का रिश्तेदार हो, या दोस्त है, या कोई भी आता था घर में, वो बेचारा रात को सोता था, हम उठ के जाता उसके पॉकेट मार देता।
2: अरे बाप रे, मैं जरा देख लूँ मेरा पॉकेट तो ठीक।
1: आपका पॉकेट? ये अभी देखो, मैं बड़ा हो गया, अभी आजकल पॉकेट नहीं मारता जी, बचपन का बात करता आपको।
2: अच्छा अच्छा,
1: तो एक बार उसका पॉकेट मारा तो दूसरी बार वो मेहमान वापस घर में आके रहता नहीं था। इसलिए मेरे तरफ से मेरे माँ बाप को बहुत फायदा था।
2: बहुत खूब।
0: अच्छा भाई, अब महमूद के बाद दो टॉप के प्लेबैक सिंगर्स की राय सुनिए। किसके बारे में? अजी, अपनी यही गीतमाला के बारे में और गीतमाला की छाओं के बारे में भी।

उसी साल की छाओ में सलिल चौधरी और प्रेम धवन और मन्ना डे की कलाओं का एक बहुत ही अमर लाजवाब

ओके साहब, अब आ रहा है एक मजेदार फ्लैशबैक उस साल के एक धूमधड़ाकेदार स्टेज शो का, जिसे मैं कंपेयर कर रहा था और जिसमें गेस्ट की हैसियत से तशरीफ लाए थे वो मजेदार मर्दाना हीरो, जिनकी एंट्री फिल्मी दुनिया में 1961 से जरा पहले रिलीज होने वाली फिल्म के जरिए हुई थी। ये थे ही मैन धर्मेंद्र। तो साहब, धर्मेंद्र जी अपने स्टाइल से झूमते झामते स्टेज पर आए और बोले, अजी मैं तो कुछ भी नहीं था और इतना कड़का था कि अक्सर पैदल चलकर मुझे स्टूडियोज के चक्कर लगाने पड़ते थे काम ढूंढने के लिए। वो तो भला हो डायरेक्टर रमेश सहगल का कि उन्होंने अपनी फिल्म शोला और शबनम में मुझे सड़क से उठाकर हीरो बना दिया। मुझे शरारत सूझी और मैंने कहा, धर्मेंद्र जी आ हा, कितनी शुभ सड़क थी वो, जरा उस सड़क का नाम तो बताइए। तो धर्मेंद्र पहले तो बौखलाए, फिर हंसे और फिर हमेशा के लिए मेरे दोस्त बन गए। खैर साहब, वो किस्सा छोड़िए और याद कीजिए कि फिल्म शोला और शबनम में एक नई हीरोइन ने किस नई गायिका की आवाज के सहारे धर्मेंद्र से नयन लड़ाए थे।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। उस जमाने की वो कुछ कुछ नहीं बड़ी सुरीली गायिका थी जगजीत कौर, जिन्होंने आगे चलकर भी कई लाजवाब गीत गाए और फिर उनकी शादी भी हो गई अपने बड़े मशहूर, बड़े शानदार, बड़े टैलेंटेड संगीतकार खय्याम साहब से। अच्छा, अब सुनिए एक और बड़े गुणी, बड़े भावुक संगीतकार के बारे में बहनों भाइयों। ये थे जयदेव, जो पहले नवकेतन के लिए उस्ताद अली अकबर खान के असिस्टेंट बने, फिर 8 फिल्मों में एसडी बर्मन को असिस्ट किया और 3 छोटी फिल्मों में खुद म्यूजिक देने के बाद उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्म मिली हम दोनों, जिसने 1961 में तो धूम मचा दी साहब। उस फिल्म के 2 गीत काफी ऊपर बजे थे गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी पर, मगर 3 गीत जो छांव में रह गए उनमें से एक था
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: यस देवानंद साहब, मगर वो गीत सुनवाने से पहले मैं जरा सुनने वालों को वॉर्न किए देता हूँ कि हम दोनों में देवानंद साहब हर चीज को जिस धुएं में उड़ाते चले गए थे, यानी सिगरेट या सिगार के धुएं में, वो धुआं बड़ा खतरनाक होता है। तो बहनों भाइयों, आप हो सके तो कभी भी सिगरेट, बीड़ी, सिगार, तंबाकू की ज्यादा आदत न डालिए। हाँ, अब सुनिए वो गाना।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग,
2: चिर परिचित, यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई भयो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागी।